0: आकाशवाणी इम्फाल ngangom किरण पाव पाजरी अहमद मरुव पाव इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे लिसिंगनी कुंतर गसी मालेमगी मफम कयाद पांगथुकनारी सेक्यूरिटी फोर्स न बिष्णुपुर जिला की मनुंग चनबा कैफा रोड पातोंदगी खुसुकलाई के अमरुम पागले अमशुंग कुंतरुक सुबह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिफम याउन बगिदमक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की कोनुंग बिस्केक टुंगक्रे इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे लिसिंगनी कुंतरुक गसी मालेमगी मफम कयाद पांगथोकनारी ड्रग ओवरडोज सतुना खुदोंगथिब नंबसिंगदगी कन्ननबा मियामदा पाक्सना खंगनबगी पानमदा पालनथोरमसि पांगथोकपनी कुमसी सही की पालनथोरमसि की हिरमदि 25 इयर्स ऑन स्टिल नीडेड हाइबसिनी इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे गमरी लेनेना फोंगदोक पुवारोलमदा राइजगी हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर एन हेमंत कुमार नहाई ओपियोट चांग हेन चारबदी ओवरडोज सली मसिदगी कन्ननबा लायेंगबदा नेलोक्सोन हाइब हिदाक मखलम सिजनै हरिब हिदाक असी कुमजा लिसिंगनी कुनिथोय की इसेंशियल ड्रग लिस्ट द हाप्तुना पीआईसी सीआईसी मसुंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंग द लेम फंगली हरिब हिदाक असी मियोय खरन छंदोंगि नमक लोन योन बयारुक पदगी हेल्थ सर्विसेस डायरेक्टोरेट ना सही असीगी अप्रैल दा अदुगु ममियोय सिंगबु दंदी पिबयाबा एडवाइजरी एम ठोकरे महाकना हाय
1: हरिब ड्रग असी कराव हम खरन कोई ननायकान नव कारवार बोंद लोन योन बा ममन हेन लोबा लान सिनबसिंग पाउलीजबदगे खोइना खोइ एक अमगी मखादा एप्रिल थादा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस ना मसिबु लान सिनब मिओसिंगदा लान यो मिओसिंगदा माइ दंदी बिबयाबा खोइ एडवाइजरी म थोसा हे अदना खोइ न माले पबगोइ नंगासी ओपियोइड ड्रग ओवरडोज अवेयरनेस डे सिबु खोइ म अपलो खमिनसी या वपनसी मयाम बोकि मपन मथमजरी
0: बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस याब अपुनब सेक्यूरीटी फोर्स की कांगबु मना बिष्णुपुर जिला की मनुंग चनबा वाटर सप्लाई पंप मनाक तलाइबा कैफा रोड पातोंदगी खुसुखुलाई कैमरुम फगतले राज्य पुलिस की कंट्रोल रूम न थादर पुचेरोल मना हाय फगलब खुलाई सिंगरु की मनुंग दा मैगजीन याब 9mm पिस्टोल मा मैगजीन याब 0.32 की पिस्टोल मा मैगजीन याब कंट्री मेट AK राइफल मा मैगजीन याब कंट्री मेट MP9 अमा कंट्री मेट SBBL अमा मैगजीन याब कंट्री मेट 0.22 की राइफल अमा हैंड ग्रेनेट अनी IED अनी अमसुंग नोई मरु के अमरुम यावरी कक्षिंग जिला के CDO यूनिट अमसुंग निफुतरुक सुबह सम राइफल्स के अपन बकांगबु अमना KYKL की मियोय अमा लांगमई दोंग मनिंग मयाय लेकाय दलेबा मसागी युमदगी फारे अतोप KYKL की मियोय अमसु लांगमई दोंग ममांग लेकाय दलेबा मसागी युमदगी फारे मंगोंदगी इंसास के अहांगो मैगजीन ननी नोई मरु कुंतरेट बाउफेंग हैंडसेट अमा बुलेट प्रूफ जैकेट अम फंगले थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस सेक्यूरीटी फोर्स के पुनम कांगबु अमना थौबाल जिला की निंगेल लमखाई KCP PWG की मियोय अम फारे ककमयाई लमखाई एरिया KCP PWG के अतोप मियोय अम फारे इम्फाल ईस्ट जिला की इरिलबुंग थोंगखोंग KYKL की मियोय अमसु जिला असी की कमांडो सिंह मदी तरेट सुब मद्रास रेजिमेंट की अपुनब कांगबु अमना फारे महाकना लुप असी द याहुनना होनरंबा मियोय अमसु कल्हौरे हायरी मिटोप खंडोक्त्रिंगैदा मिकोक थिब यारोय नो NRC नो सेंसस हाइब खोलाव गलोइनना हौकिबा अहिंगदा कक्षिंग जिलादा मैरागी रैली पांगथोखरे जिला असिगी मनुंग चनलाइब हियांगलम वबगाय लमजाउ तेजपुर अमदी कैरक्की अकोइबद लैरिबा मसिंग यामलब मियामना मैरागी रैली अदुद सरुकियाकी रैली अदु जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD गि मिटिंग मखादा पांगथोखिबनि हायरी सगोलबंद केंद्र की मोयरांग लेरक्त लैबा नौन सेमजिलबा लाइनिंग थौ खपलांग ब कॉम्प्लेक्स गरांग MLA RK इमोन संगाख्रे कॉम्प्लेक्स असी श्री इमोना लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड गि लुपा लाख कुंथ्रा मंगा काइथोकतुन नौन सेमजिन मनी थारोमदु दुवांगांग श्री इमोना हाय मतंगि मतुंग इन अहोम मकिया लाख लिबा सिग इरोइनना मियांग मरि लेनब मरु ओइब मफम सिंग नौन सेमजिन बगि तंगाइ फदबले मियांग मरी लेने वासी मफम सिंह मखा तान सेमजिन बगी थबक चथकी कनी हाइनासु MLA ने फोंगदोकी OBC सिंह दा सरकार ने पीरे वकान बसिं मियाम ने हेना खंगन बगी पांदम दा जिला थाकी मिफम मा कक्षिंग जिला की मनुंग चनलाइबा शकमाइजिन मयाई लेकाई कम्युनिटी हॉल द पांगतोकरे थारोमदु गु सरकम ओइना लाइरिक फब महिरो सिंहबु ओकतुना पुनिंग थगतकी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर नहारी मणिपुर की जिला अयामदंगसि नोंगचुगनी ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯖꯤꯂꯥꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯁꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯀꯥꯛ ꯑꯔꯥꯎ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤꯅꯤꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ
2: ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ. ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ꯫ ꯖꯤꯟꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ, ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ, ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗ ꯊꯤꯟꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯨꯔꯣꯟꯗ ꯂꯧꯅꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ, ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯁ�ꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ. ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ. ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ꯫
0: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯟꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯁꯪꯍꯥꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ SCO ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯥꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯒꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯕꯤꯁꯀꯦꯛꯇ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯕꯤꯁꯀꯦꯛ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ SCO ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯁꯪꯍꯥꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯨꯟꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ, ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯈꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯆꯌꯣꯜ ꯃꯔꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯋꯥꯔꯐꯤꯌꯔ ꯀꯣꯔꯁ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯌꯥꯠꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯏꯁꯇꯥꯐꯀꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯙꯥꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯙꯥꯅꯤ
3: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯤꯔꯟ꯫ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ, JFT ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯂꯒ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥꯒ ꯎꯅꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈꯥꯏ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯌꯩꯊꯣꯛꯂꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯔꯨꯜꯁ 2024 ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯔꯖꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯎ ꯊꯥꯕ ꯒꯨꯝ ꯊꯥꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯍꯨꯏꯌꯦꯂꯟ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯤꯇꯧ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ CPI ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯦ꯫ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯑꯣꯒꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯦꯜꯂꯤ